फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई, खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

वहाँ नाचे नाचे, कोई वहाँ आहा नाचे नाचे, सारे हंसी आहा नाचे नाचे।

0: है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
1: हेलो एंड गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज के घड़ी में एक मिनट दो मिनट हो गए हैं 1:00।

Welcome back once again. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप कितनी पहचान रेडियो विस्पानी 71 किलोहर्ट्ज पर हमारे स्टूडियो 17 मास रॉक्स बचपन से शनिवार मस्ती म्यूजिक है। अभी से लेकर ठीक 3 बजे तक साथ है हमारा आपका आपके साथ सो। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं, अगर आज आपकी शादी की सालगिरह है और आपके जन्मदिन है, कुछ भी आपके साथ खुश है, खुशी खबरी है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे से बधाइयां हमारी तरफ से। जो लोग आज हमारे ब्रिस्बेन के मेहमान हैं, आप सभी का स्वागत है रेडियो विस्वानी पर। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, वेलकम ऑन रेडियो विस्वानी शो। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से। सिर्फ जिंदगी एक हसीन ख्वाब बन जाती है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल सही, कि जिंदगी में कोई दर्द आए, मुस्कुराइएगा।

0: अरे मुस्कुराए।
1: जादू से हम भी ये कहना चाहते हैं कि तेरी जिंदगी में क्यों दर्द आएंगे तो मुस्कुराएगा। आपने सुना जोहेब हसन की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग पर्दे पर अमितेश के लिए, और इस गीत को मैंने लिया था फिल्म पर्दे पर कुमार गौरव के लिए, इस गीत को मैंने लिया था फिल्म स्टार से। चलते हैं उसी फिल्म का अगला गीत सुनते हैं नाजिया हसन की आवाज में।

एक बार फिर स्टार सिलवा गीत आपने सुना नाजिया हसन की आवाज में। यह शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो ब्रिस्बेन आयाम। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त ब्रिस्बेन टाइम हमारे स्टूडियोज में 12 मिनट हो गए हैं 1:00। अब बहुत समय नहीं लेते हुए दोस्तों चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं फरमाशी प्रोग्राम, क्योंकि बहुत से लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। खास करके आज की पहली फरमाइश है हमारे पास दक्षा सोलंकी की ओर से, जो हमें सुन रही है लेस वेगस में। दक्षा आपके लिए अनीता गोयल की आवाज में आज पहला फरमाइश आपकी है।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमेशा इस गीत को आपने लता जी की आवाज में सुना, लेकिन आज एक नए गायिका अनीता गोयल की आवाज में इस गीत को सुना। और हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं दक्षा सोलंकी फ्रॉम लास वेगास।
1: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: Honey, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये grocery pass वाले shop से ले सकते हैं ना?
3: Yes, baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ. Quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह! इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
0: शनिवार मस्ती म्यूजिक है दोस्तों, रेडियो बिस्पानी आईएम है और साथ है हमारा आपका 3 बजे तक। और इस मस्ती भरी प्रोग्राम में आज हम एक वैरायटी प्रोग्राम आपके लिए पूरा है, आपके लिए एक हरा भरा गीत से, यानी कि बिल्कुल एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंट करने वाले हैं आपको। शायद लास्ट आवर में बिल्कुल ही फास्ट सॉन्ग्स में आप हमारे साथ चले जाएंगे। चलते हैं कैडरन पाक की और जोनी और सविता की अगली फरमाइश है हमारे पास, सुनते हैं।

0: They told me neuropathy.
1: तो दोस्तों बहुत प्यारा सा गीत इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे जोनी और सविता जो हमें सुन रहे हैं केड्रोन पार्क में शिकागो की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ शामिल हो गए हैं अगला गीत में अमला सिंह और अमला आपकी पसंद पर सुनते हैं आशा जी की आवाज में अगला गीत।

0: फिल्म का नाम था गीत गाया पत्थरों ने, आशा भोसले की आवाज फरमाइश करने वाली थी अमला सिंह जो हमें सुन रही है शिकागो में।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
11: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar. और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan. और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
0: और जिंदगी यूं ही ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, यूं ही नहीं मिलती जिंदगी, ऐसे हर राह पर चलना पड़ता है, हर आंसू को पोंछकर खुद ही संभालना पड़ता है। आसान नहीं होती उड़ान कभी, हौसलों को बुलंद करना पड़ता है, सपनों की खातिर अक्सर सब कुछ दांव पर रखना पड़ता है। हमें आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी और चलते हैं पैरामाटा सिडनी की ओर। पैरामाटा सिडनी से अगली फरमाइश है हमारे पास रॉबिना उषा की ओर से। आप दोनों के लिए सुनते हैं अगला गीत क्या है।

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे रॉबिन उषा फ्रॉम पैरामाटा सिडनी. हम चलते हैं अकेशिया रिच आचा फिल, सॉरी आचा फिल से फरमाइश है हमारे पास अनवर और शहरुल की ओर से. आप दोनों की पसंद.

आज जरूर हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान. और समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 5 मिनट रह गए हैं 2 बजने में. यह है शनिवार मस्ती म्यूजिक.

बहुत प्यारा से गीत जिलमिया से फरमाइश आई थी इस गीत के लिए हमारे पास, जहां हमें सुन रहे विजय और माला, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी दोस्तों, साथ है हमारा आपका ठीक 3 बजे तक यह शनिवार मस्ती म्यूजिक।

0: और हम चलते हैं इस सैक्रामेंटो की ओर। दोस्तों फरमाइश है हमारे पास सैक्रामेंटो से विजय और कामनी की ओर से, देखिए आप दोनों की पसंद क्या है।
1: हाँ जी, तो अभी अपनी गाड़ी भी सच दच गए, एकदम रेडी हो गया आ चुकी है।
2: सित्तू भाई जी,
1: हाँ जी, तो अभी आ चुकी है गोड़ी और ठीक है, अपनी गाड़ी भी सच दच गए, एकदम रेडी हो गया आ चुकी है। और पीछे पोस्टर देखो सित्तू,
0: माफ कीजिएगा सही गीत नहीं है, हम आपके लिए सही गीत लेकर आने वाले हैं।

हैं शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो बिस्पानी आई एम। 10 मिनट हो गए हैं हमारे स्टूडियोज में, 10 मिनट हो गए हैं 2:07 हमारा आपका 3 बजे तक। शामिल हो गए हमारे साथ कामनी एंड विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप सुनना चाहते हैं दादी की शादी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों बहुत प्यारा सा गीत जिसे फरमाइश करने वाले थे कामनी और विजयन फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। आप सुन रहे हैं रेडियो विजयवाणी।

शर्मा शाही है दोस्तों, हमारे पास अगला गीत के लिए जिम बुम्बा से सोनिया की ओर से। हाय सोनिया, चलते हैं आपके लिए, शामिल करें पार्टी टाइम पर।

चलते हैं अगला गीत के लिए। हमारे पास फरमाइश है और गीत है, गीत नहीं है, गजल गीत है, भूपिंदर और सुरेश वादेकर की आवाज का। फरमाइश है हमारे पास ऑल द वे फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए, यूएसए से जहां पे सुन रहे विजय नाव कामनी वंस मो। आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गजल सॉन्ग।

दोस्तों इसकी फरमाइश आई थी हमारे पास गजल गीत की सुरेश वादेकर और भूपेंद्र की आवाज के वहां सैक्रामेंटो यूएसए से, जहां मैं सुन रही विजयन और कामनी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्पानी 79 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियोज 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से आपके साथ सुसाथ ही हमारा आपका ठीक 3 बजे तक।

चलते हैं अगले गीत के लिए। हमारे पास फरमाइश डेडिकेशन आई हमारे पास 8 मास प्लेन से, जहाँ हमें सुन रही हैं हमेशा की तरह अल्पना। हाय अल्पना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन। और अल्पना अगला गीत को डेडिकेट कर रही है टू हर बेस्ट फ्रेंड जो इस वक्त कैलिफोर्निया यूएसए से हॉलीडेज पर लोटोका फिजी में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और जिनका नाम है रोहितेश। हाय रोहितेश, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल द वे, एंजॉय फिजी। और आज आपको याद कर रही है यहाँ ऑल द वे फ्रॉम ब्रिस्बेन से आपकी बेस्ट फ्रेंड अल्पना फ्रॉम 8 मास प्लेन्स।

बात पर ऐसे गीत किशोर कुमार की आवाज का गीत पति पर राजेश खन्ना के लिए फिल्म खड़ी पतंग से लेवा गीत डेडिकेशन आई थी हमारे पास 8 माइल्स प्लेन से अल्पना की ओर से और अल्पना ने इस गीत को डेडिकेट किया टू है बेस्ट फ्रेंड रोहितेश जो कैलिफोर्निया यूएसए से लौटा काफी जी में हॉलीडेज पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी।

प्यास के बैगन में सुरुआ डाल के गीत आपने बहुत बादशाह सुना। शायद राइट ऑफ विस्वानी पर आपने बहुत दिनों बाद इस गीत को सुना होगा। इस गीत को मैंने लिया था ट्रिनिडाड एल्बम से। और देखिए हमारे बहुत से लंबासा वाले दोस्त यहाँ पर है, ब्रिस्बेन में, मुझे पता नहीं और कहाँ कहाँ पर है। तो लंबासा का नाम भी एलई वैसे रखा गया है। हमारे जितने भी लंबासा वाले दोस्त है, चलते है आपके लिए खास गीत हमारी तरफ से।

लंबा सवाल है, खुश ना, बहुत प्यारा सा गीत हमारे वहाँ पर जो लंबा सा के जो लोकल सिंगर्स की आवाज में इस गीत को आपने सुना। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो मैंने गिरमिट पर भी प्रोग्राम किया था लास्ट वीकेंड पर, इसके लिए हमारे पास आई गॉट द बिगेस्ट फीडबैक। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एंजॉइंग द प्रोग्राम। और हमें मांग किया गया है कि इस वीकेंड पर भी उनमें से कुछ गीतों को जिसे मैंने गिरमिट पर गिरमिट के दिन अप्लाई किया था, दे वॉन्ट टू लिसन अगेन। सो इफ आई हैव टाइम टुमारो, हम कोशिश करेंगे इस गीत को फिर से आपके लिए बजाने के लिए। इसी के साथ साथ हमारा चलने का समय हुआ क्योंकि 3 ही बजने वाले हैं और कल हमारी आपकी मुलाकात होगी ठीक 2:30 से, यानी कि 2:30 बजे से। आप अपना ख्याल रखें, एंजॉय योर वीकेंड, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Wollongabba. Open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फाइनली फाइनली फाइनली आए तो मतलब जिंदगी में मुझे लगता है जितना हम सांसों का इंतजार करते हैं उतना ही इस दिन का इंतजार करते हैं। मैं बात वीकेंड्स की कर रही हूँ भाई, हमारे वीकेंड्स जो हमें सुकून देते हैं, खुशियां देते हैं, एंजॉयमेंट देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपना वाला वक्त देते हैं। तो लीजिए जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और एक बार फिर से आपकी जिंदगी में आ गए हैं यही प्यार भरे वीकेंड्स। जी हाँ, बहुत सुकून है, बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है इन वीकेंड्स में, हमारे सैटरडे और संडे के दिनों में, क्योंकि इनके साथ ही जो एनर्जी हम खोते जा रहे थे ना, मतलब पूरे हफ्ते काम करने के बाद जो थकान थी उसे हम वापस गेन करेंगे और आने वाले वीक को खूबसूरत बनाएंगे। सो यस, आपके इस वीकेंड को हम भी खास बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए रेडी हैं एक बार फिर से रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और इस वीकेंड आपके साथ एक बार फिर से सताक्षी है दोस्तों। तो चलिए इन वीकेंड्स को खास बनाने की कोशिश रेडियो प्रस्वानी पर करते हैं और शुरुआत करते हैं इस ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, सैटरडे डिलाइट आपके साथ है सताक्षी और आप सुन रहे हैं मुझे अपने वीकेंड्स पर।

वेलकम बैक सैटरडे डिलाइट। आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर। यू तो हर दिन बहुत ही हसीन और खास होता है, लेकिन जब बात हो छुट्टी की तो मतलब किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं होता है कि बॉस क्या खाना है, क्या सोना है, क्या पहनना है, क्या दिखना है, कैसे लगना है, कैसे लुक्स होने चाहिए। ना, हमें जैसे पसंद है हम वैसे पहनते हैं, हम जिन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं हम वो कपड़े पहनते हैं, हम जैसे लगना चाहते हैं हम लगते हैं, हमें उठने का मन है तो हम उठेंगे, नहीं मन है तो रहने दीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो बॉस अपना दिन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वीकेंड्स की होती है वो ये कि अपने बॉस हम खुद होते हैं, है ना, हमें किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करना है। तो बस इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सुकून मिलता है जब सैटरडे आता है और वो बताता है कि भैया अब ना तो ऑफिस के बारे में सोचना है और ना ही बाहर से झांक के ऑफिस वालों को देखना है। अगर कोई दिख भी जाए तो उसे पहचानना नहीं है। तो अगर आपकी कम्युनिटी में, आपके आसपास, आपके अपार्टमेंट में कोई आपके ऑफिस का रहता है बंदा, तो उसे बिल्कुल मत पहचानिए और बस आज अपने में खोए रहिए और अपने राजा बने रहिए। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को भी सताक्षी के साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे लाइट।

बार हम अपने वीकेंड्स भी लोगों के हिसाब से जीते हैं, है ना, कि भाई वो काम करना है यार तुम्हें, ना मेरे साथ यहाँ चलना है इस बार। कई दोस्त भी हमारे होते हैं जो हमें पकड़ पकड़ के ले जाते हैं और हम कहते हैं कि यार हम उसे क्या ही कहते। देखिए ये जो वीकेंड आपकी जिंदगी में आते हैं, है ना, सैटरडे संडे या फिर मैं कहती हूँ वीक डेज में भी अगर ऐसा होता है, तो आपकी लाइफ आपकी है। कई बार कई चीजों में आप बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, आप राजी नहीं होते वो काम करने के लिए कि यार आज तो छुट्टी मिली, अब आज कहाँ ही जाएं हम, है ना, लेकिन उसके बाद भी आप मना नहीं कर पाते हैं। तो देखिए जब बात खुद की हो, खुद के सुकून की हो, खुद के पीस की हो, तो यार मना कर देना गलत भी नहीं है ना। और अगला बंदा अगर वाकई आपका दोस्त है, आपका अपना है, तो वो समझेगा कि भाई बेचारा सुबह से शाम तक रोज खपता है ये इंसान, और इसको भी वीकेंड पर जरूरत है थोड़ी सी सुकून की, प्यार की, है ना। तो बहुत जरूरी है कि जिन चीजों में आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके लम्हों में वो चीजें जो खलल डाल रही हैं, आप उनके लिए ना बोलना सीखें। ये आपकी लाइफ है और इसे आपको अपने हिसाब से जीना, एटलीस्ट वीकेंड पर तो, राइट। चलिए एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक और सुनते रहिए सताक्षी के साथ कुछ क्रेजी लम्हे आपके अपने सैटरडे डिलाइट में।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: हमारे और आपके वीकेंड वाले साथ को आप इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। सताक्षी के साथ ये साथ और भी खूबसूरत और हसीन हो गया है, और इस हसीन पल को थोड़ा सा और हसीन करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। इंजॉय कीजिए इसे और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, और लगाते रहिए अपने वीकेंड में चार चांद।

वेलकम बैक किसी एक और ट्रैक के। इस बार आप सताक्षी के साथ हैं। कैसे गुजर रहे हैं वीकेंड्स, कैसे गुजर रहा है आपका सैटरडे? देखिए बॉस, बार बार हम आपसे यही कहते हैं कि अपने सैटरडे को जितना स्पेशल और खास बना सकते हैं बना लीजिए। अच्छा ये बताइए ना, आज कुछ प्लानिंग श्लानिंग की है कि नहीं, या मतलब ऐसे ही ये वीकेंड्स भी गुजर जाने वाले हैं? देखिए मुझे लगता है कि लाइफ के हर एक पल की प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है, और खासकर अपने वीकेंड्स की, अपनी छुट्टियों की, अपने हसीन लम्हों की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आपका स्पेशल वन, जी आपका पार्टनर, आप जिस रिलेशनशिप में, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। देखिए कहने के लिए तो हम ये कह देते हैं कि यार रोमांस का या क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का एक वक्त होता है, और वो वक्त निकल जाने पर फिर वो मजा नहीं रहता जिंदगी में, और वो जो है कितना टाइम है हमारे पास जो हम एक अच्छा वक्त साथ गुजारें। तो देखिए कहते हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यार यही कह रहे हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी यही कह रहे हैं, साइकेट्रिस्ट भी यही कह रहे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता खूबसूरत है, अगर आप दोनों के बीच में एक बॉन्ड खूबसूरत है, और आपके बीच में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त निकल आता है, एक अच्छा वक्त, चाहे आप पिकनिक पर निकल जाएं, आप मूवी देखने साथ में निकल जाएं, कुछ दिल की बातें खुद एक दूसरे के साथ करें, कैसा भी वक्त अगर आप एक दूसरे के साथ जी पाते हैं तो फिर जो है वो वक्त आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास बन जाता है। तो यस, जरूर वो वक्त निकालिए अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने लिए, ताकि आप दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो खूबसूरत बन पाए। और वीकेंड से अच्छा जो है वो और कुछ नहीं हो सकता, कोई वक्त नहीं हो सकता एक दूसरे को वक्त देने के लिए। एक कोई और ट्रैक इसी बात पर सताक्षी के साथ सुनिए। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट मेरे साथ।

0: हम पानी में वापस जा सकने के बारे में उत्साहित हैं, लेकिन हमें सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। हमेशा बच्चों के साथ रहें, शराब नहीं पिएं, मछली पकड़ते या नाव की सवारी करते समय लाइफ जैकेट पहने रहें, मौसम के बारे में पहले से पता करें, कभी भी अकेले पानी में नहीं जाएं। रॉयल लाइफ सेविंग चाहता है कि आप सुरक्षित तरीके से पानी का आनंद उठाएं।
1: लाइट आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रसानी 1701 एम पर। सैटरडे आपका वो सफर जिसके साथ आपका हर दिन खूबसूरत लगता है आपको, क्योंकि इस वीकेंड के आने का इंतजार जो तहे दिल से आप करते हैं। आज भी ये वीकेंड एक बार फिर से आपके साथ है और इस वीकेंड के साथ न सिर्फ आज का दिन बल्कि आपका आने वाला हफ्ता भी बढ़िया और जानदार होने वाला है। एक बढ़िया सा ट्रैक इस वक्त सुनिए मेरे साथ इसी बात पर और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर सैटरडे डिलाइट्स।

0: बटा लव इश्क बबुआ।
1: कि हमारी खास और खूबसूरत बातों का सफर सैटरडे डिलाइट इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रिस्वानी 1701 एफएम पर। कुछ पल बहुत खास होते हैं क्योंकि ये पल हमारे अपने होते हैं। देखा जाए तो कहते तो हैं हम सब की जिंदगी हमारी है, लेकिन इस जिंदगी में हमारे लिए कितना बचता है ये हमें खुद समझ में नहीं आता। हमेशा सबके लिए करते करते अपने लिए कुछ वक्त संजोना, कुछ वक्त निकालना हम भूल जाते हैं। तो फिलहाल आप अपनी जिंदगी से अपने लिए वो वक्त चुरा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में आपका है, और इसी वक्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इस गाने के साथ। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो प्रिस्वानी पर सैटरडे डिलाइट एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी 1701 एफएम। रिसेंटली फाल्गुनी पाठक का वो गाना सुन रही थी कि मैंने पायल है चनकाई, क्यों ना आया तू हर जाई। ये गाना मतलब बहुत रोमांटिक है और एक वक्त में बहुत सुपर हिट भी हुआ था। इंडियन पॉप म्यूजिक जिस वक्त सुपर हिट था 90s के दौर में, फाल्गुनी पाठक का ये गाना एक अलग ही जलवा रखता था। लेकिन इस गाने को सुनते हुए मैं ये सोच रही थी कि अगर रात को 2 बजे कोई पायल छनका के उस हरजाई को बुलाए तो वो बेचारा हरजाई आएगा कैसे, है ना? डर के मारे तो उसकी वैसे ही ठंड फिस हो जाएगी। तो इसलिए भाई अगर पायल छनका कर किसी को बुलाना है तो जरा वक्त से, टाइम से, क्योंकि वक्त के बाद आप खूबसूरत नहीं लगती, आप डरावनी लगती है। ठीक है जी, चलिए इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रिस्वानी सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन वीरे, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: सैटरडे का खूबसूरत साथ सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं आप? जी हाँ, सफर है ये सैटरडे डिलाइट का और आपके सैटरडे को खास, स्पेशल और बेहतरीन आपके लिए बनाने की कोशिश सताक्षी कर रही है। सो कैसा लग रहा है ये वीकेंड हमारे साथ? शेयर करते रहिए और एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट। फिलहाल एक और ट्रैक मेरे साथ अभी सुनिए और कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

यू नो व्हाट, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस आपको कभी नहीं मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, लाइफ में सब कुछ बैलेंस कभी हो ही नहीं सकता। सपोज अगर आपको एक बढ़िया करियर चाहिए, सक्सेसफुल करियर चाहिए, तो या तो आपके फ्रेंड सर्कल का कॉम्प्रोमाइज आप करेंगे उसमें, या नींद का कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, बहुत सारी शादियों में पार्टीज में न जाना भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, रिलेशनशिप आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एक चीज को पाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करनी ही करनी है, और ये होगा ही होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि हमारी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, कोई कोई इम्बैलेंस क्रिएट करके ही एक चीज बैलेंस होती है लाइफ में। एक और ट्रैक इसी बात पर, सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रसवानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट इस वक्त मेरे साथ।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: सो आपके वीकेंड्स को सदाक्षी के साथ इस वक्त आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सफर है सैटरडे डिलाइट का, और सैटरडे डिलाइट के सफर के साथ हमारा आपका ये साल भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो भाई कैसे गुजर रहे वीकेंड्स? कहीं बाहर जाने की प्लानिंग है? आउटिंग का कोई मामला फिट हो रहा है, या फिर घर पर रहकर ही अपने वीकेंड्स एक्सपेंड कर रहे हैं? तो शेयर कीजिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर, और एंजॉय कीजिए अभी अगला ट्रैक भी सताक्षी के साथ। एंजॉय कीजिए ऑन के प्लस रिंग टू रेडियो प्लस वाणी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट इस वक्त मेरे साथ।

लाइफ में कई बार हम अपने आप को फ्री नहीं कर पाते, हम चीजों को पकड़ के जकड़ के रखते हैं। हमें पता है कि ये चीजें जो है ये हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उन्हें हमेशा थाम कर रखते हैं, हम उन्हें हमेशा पकड़ कर रखते हैं। ये इंसान हमें ऐसे प्यार करेगा, ये इंसान हमारे साथ ऐसे रहेगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम पाल के रखते हैं और हमारे वीकेंड्स का भी सत्यानाश हो जाता है इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में। कई बार जो आपने सोचा है एक्चुअली दूर दूर तक वैसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसान है और हम फिर से एक्सपेक्ट कर लेते हैं, फिर से हम परेशान होते हैं क्योंकि हमारी चीजें हमारे हिसाब से होती नहीं है। तो इसलिए जब आप चीजों को वक्त पे छोड़ देंगे, आपको लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन अब आपके हाथ की नहीं है, उस वक्त आप देखेंगे कि बहुत इजीली सब कुछ आपको मिलना भी शुरू हो जाता है। कभी कभी चीजों को जाने देने में ही उन चीजों को पाना होता है, बस करके देखने की जरूरत है। इसी बात पर एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर दोस्तों।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: हमारे और आपके वीकेंड वाले साथ को आप एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। सताक्षी के साथ ये साथ और भी खूबसूरत और हसीन हो गया है, और इस हसीन पल को थोड़ा सा और हसीन करते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। एंजॉय कीजिए इसे और मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, और लगाते रहिए अपने वीकेंड में चार चांद।

देखिए, बातों के लिए रोज रोज वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जब अपनों से बातों के लिए वक्त मिल जाए, मुझे लगता है वही वीकेंड हो जाता है। क्योंकि रोज इतनी जल्दी रहती है, इतनी भागदौड़ रहती है कि अक्सर हम सामने बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, लेकिन वीकेंड्स पर सामने बैठकर, बेड पे लेटकर, चलते फिरते किचन में साथ में हाथ बटाते हुए, घर के कामों को समेटते हुए, रूम्स की सफाई करते हुए एक दूसरे से ढेरों बातें हो जाती हैं। और वो कॉफी के कप के साथ वाली बातों की तो क्या ही बात कहें, मतलब कॉफी डेट से ज्यादा मजा देती हैं वो साथ में काम करते हुए कॉफी एंजॉय करने वाली बातें, है ना। तो ऐसी ही बातें आई होप कि इस वक्त आप भी कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, और उन बातों के नाम प्ले कर रही हूँ ये अगला ट्रैक। एंजॉय कीजिए इसे और सताक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सैटरडे डिलाइट।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। हर एक फेज में जिंदगी के पैसा बहुत जरूरी है। आप बीमार पड़े तब पैसा बहुत जरूरी है। घर की जरूरतें पूरी करनी हो, कुछ क्लासी खरीदना हो, पैसा जरूरी है। अच्छे से ड्रेसअप होने के लिए जरूरी है। बच्चों की स्टडीज के लिए जरूरी है। जरूरी है बॉस, बहुत जरूरी है। लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक ऐसा हमसफर जरूरी है जो शरारती हो, जिसकी बातों में शरारत हो, जिसकी हरकतों में शरारत हो, जो आपको हर एक पल मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। अगर जिंदगी में सिर्फ जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने हर कंफर्ट को लेना चाहते हैं, तो फिर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर जिंदगी में मुस्कुराना चाहते हैं, जिंदगी को थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, तो एक ऐसा हमसफर बहुत जरूरी है जो आपकी जिंदगी को आपके लिए थोड़ा सा आसान बना दे। जब आप थक कर आए तो उसकी शरारत भरी बातों से आपके होठों पर मुस्कुराहट आ जाए, है ना। और उसी शरारती हमसफर के नाम ये अगला ट्रैक है। इसे एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

तो दोस्तों, ये था इस वीकेंड हमारा और आपका साथ कुछ बेहतरीन बातों और हमारे और आपके ख्वाबों से सजा हुआ। एक और साथ पर कुछ खास बातों के साथ अगले वीकेंड आपसे जरूर मिलूंगी। सुकून भरे कुछ पल होंगे, हमारा आपका साथ होगा, नए नए एहसास होंगे और ताजगी खूबसूरती हम सब कुछ फील करेंगे। लेकिन आज के सफर से अब ये वक्त है इजाजत लेने का, विदा लेने का। तो चलिए, अपने वीकेंड्स को जरूर खास बनाते रहिए, उन्हें जीते रहिए, सेलिब्रेट करते रहिए। मेरी आपसे मुलाकात होती है अगले सैटरडे, और तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीकेंड्स।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

किसने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

ना बदला में।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

0: 不会。
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane पे.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: तुम्हारे साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ना बदला में, ना

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: Pourquoi?
1: Bonne année, bonne année.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

रेडियो प्रसारणी 1701 AM एक बार फिर से लेकर आ गया है आपके लिए भक्ति सागर। ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन आप जिस नाम से चाहें उसे पुकारें, वो आपके अंदर अपनी श्रद्धा उसी भाव से उसी नाम से बढ़ा देते हैं। और हम भी आज एक बार फिर से ईश्वर के प्रेम का स्वाद चखने के लिए, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव दिखाने के लिए और उसकी आस्था उसकी भक्ति करने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं भक्ति सागर में रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर। मैं हूं श्रोताओं सताक्षी आपके साथ, और मेरे साथ भक्ति रस में डूबे कई ऐसे अनोखे और खूबसूरत गाने हैं जो आज इस भक्ति के महत्व की महिमा भी आपको बताएंगे और आप भक्ति के रस में डूब कर इससे सराबोर भी हो जाएंगे। तो चलिए भक्ति का आनंद लेते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ भक्ति सागर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर।

लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। कहते हैं ये वचन तुलसीदास जी के अंतिम उपदेशों में से एक है, जिसमें वो कहते हैं कि लाखों बातों में से एक बात ये कह रहा हूँ जो सबसे अनमोल है। ये अनुभव की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मानव जीवन आपका सफल हो, जीवन सार्थक हो और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले, तो बस श्री राम के नाम का जाप, स्मरण और भक्ति कीजिए। भक्तजनों, सही बात है, तुलसीदास जी ने जीवन का मर्म बता दिया है। अगर आप जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप अपने इस मानव धर्म को सफल बनाना चाहते हैं, तो सब बातों को छोड़कर राम नाम का स्मरण करते रहिए। और आइए भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं आपको लेकर भक्ति सागर में, रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर।

भक्ति सागर सुन रहे हैं भक्तजनों, आप सताक्षी के साथ। भक्ति के इस सागर में इन भक्ति गीतों के साथ कुछ ऐसे ओतप्रोत हो रहे हैं हम, जैसे ये भक्ति गीत हमें प्रभु की ओर और करीब खींच रहे हैं। आइए भक्ति रस से डूबा एक और गीत सुनते हैं। सुनते रहिए भक्ति सागर और रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ।

रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप भक्ति सागर में। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही बेहतरीन बात अर्जुन से उस वक्त कही थी जब वो गीता का उपदेश उन्हें दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता में वो कहते हैं कि हे अर्जुन, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तुम्हारे अपने नहीं बुराई का साथ देने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, शस्त्र उठाओ, युद्ध करो और हम स्थापित करो। जी हाँ, अगर सामने अधर्मी खड़ा है तो वो चाहे जितना आपका अपना है, लेकिन अधर्मी अधर्मी ही होता है, पाप पाप ही होता है, फिर चाहे वो किसी के द्वारा भी किया गया हो। भगवान श्री कृष्ण की इसी वाणी के साथ आइए आपको आगे लेकर चलते हैं भक्ति सागर में, रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।

रेडियो प्रसवानी पर आप सुन रहे हैं भक्ति सागर, आपके साथ सताक्षी है और भक्ति के इस पावन और आनंदमय सफर में आपके साथ आगे चल रही हूँ एक और भक्ति गीत के साथ। सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर।

श्रोताओं, हम हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना करना हम अक्सर भूल जाते हैं। माँ लक्ष्मी धन देने वाली हैं, लेकिन उस धन को कैसे खर्च करना है कि वो कई गुना बढ़ जाए, कहाँ लगाएं कि उसमें लगातार वृद्धि होती रहे, ये ज्ञान हमें विद्या से आता है। और विद्या की दात्री माँ सरस्वती, उनकी आराधना करने से हमारे दिमाग का विकास होता है। इसलिए सिर्फ माँ लक्ष्मी नहीं, माँ सरस्वती की आराधना भी कीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती आपको धन कमाने के इतने रास्ते दिखाएंगी कि माँ लक्ष्मी आपके पास आएंगी जरूर। तो माँ लक्ष्मी में खोकर माँ सरस्वती को भूलना नहीं है, माँ सरस्वती को याद करके माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खोलने हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बस समझने की देर है। आइए सरस्वती वंदना के साथ आगे बढ़ते हैं। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

मनुष्य अक्सर अपनों को पराया और परायों को अपना समझ बैठता है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराए अपने, तो समझ लीजिए आपका विनाश का समय प्रारंभ हो गया है, क्योंकि पराए आपके अपने बनकर आपको धोखा देते हैं। वो आस्तीन में पाले उस सांप की तरह होते हैं जो वक्त आने पर सबसे पहले आपको डसता है। इसलिए अगर अपनों पे भरोसा नहीं कर सकते तो परायों पे भी भरोसा मत कीजिए। सुनते रहिए भक्ति सागर सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर।

तो भक्तजनों, ये था आज भक्ति सागर में हमारा आपके साथ, या ये कहें ईश्वर की वंदना के साथ एक और साथ। आज हम ईश्वर के दो कदम और नजदीक बढ़े। उम्मीद करते हैं कि आज आप इस भक्ति रस में खोकर आनंदित जरूर हुए होंगे। तो प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आपको हमेशा वो धर्म की ओर और अधर्म से दूर करे। इसी मंगल कामना के साथ आज के सफर से ले रही हूँ विदा। राधे राधे।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेदवाणी।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो मेजबानी पर दोस्तों, और प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। और अभी सुबह सुबह आप कुछ धार्मिक प्रोग्राम सुनते आए हैं, और अब यहाँ से एक घंटा का प्रोग्राम मेरे साथ, और फिर इसके बाद आप संगीत की झनकार टीम के साथ हो जाएंगे। अफसोस की बात है कि आज रोय सिंह और सूर के साथ आप कार्यक्रम नहीं सुन पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा यहाँ पर कुछ मुझे मेंटेनेंस करना है। और फिर लेकिन होपफुली 5 बजे से आप शशि झोकन के साथ प्रोग्राम को सुन सकेंगे, ठीक है? तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा। चलिए, आज का जो मौसम है, मौसम के लिए कहा गया है कि कुछ इधर उधर वहाँ यहाँ वहाँ कुछ बारिश होने की संभावना है, और 16 and 25 रहेगा। कल के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर 17 रहेगा, मैक्सिमम 24 रहेगा, और शावा 2 कहा गया है। और मंगलवार के लिए शावा 2 17 and 25, वेंसडे को शावर्स 18 and 24 कहा गया है, थर्सडे को भी शावर्स 17 and 24, फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी रहेगा 13 and 22, और सैटरडे को नो रेन, मौसम साफ रहेगा। तो ये रहा हमारा वेदर। नंबर है 04300031701, या स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं 3279-1701 पर। तो चले, जैसे मैंने कहा एक ही घंटा का प्रोग्राम है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। और रबी शैगुल के साथ आप सुनेंगे दोस्तों तेरे बिन।

और चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और चलिए एक छोटा सा क्विज आपके लिए, जो गाना मैं बजाने जा रहा हूँ, ये एक 1981 के एक सुपरहिट फिल्म था दोस्तों। फिल्म का रोमांटिक ड्यूट है और किशोर कुमार और लता मंगेश इन दोनों की आवाज़ों में है। और सवाल है आपसे, क्या यही प्यार है जो गीत है, ठीक है, बताइए फिल्म का नाम क्या है। टेल मी इफ यू कैन टेल मी क्यों किस फिल्म का नाम से लिया गया है, ठीक है, किस फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार, आर डी बर्मन के संगीत पर आप सुनेंगे दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, क्या यही प्यार है? दिन तेरे बिन गुजरता नहीं, दिल लगता नहीं तेरे बिन। जी हाँ, कुछ ऐसी लाइन था इसमें दोस्तों। और किशोर कुमार लता जी से इस गीत को आपने सुना, द सॉन्ग। इसको पिक्चराइज किया गया था संजय दत्त और टीना मुनीम के लिए। थैंक यू विनी। और मूवी रॉकी 1981 मूवी का गीत रॉकी से इस गीत को लिया गया था दोस्तों। चलिए आगे लता मंगेशकर और अदनान सामी खान से आप सुनेंगे, क्या यही प्यार है? यानी कि नहीं, शायद यही तो प्यार है। आज हम सिर्फ प्यार की बात करते हैं, क्या बात है, सब गीत में तो प्यार ही है दोस्तों।

गीत है, ये गीत, ये जो गीत है श्रेया घोषाल, और साथ दिया है इसमें उस्ताद सुल्तान, जी हाँ सुल्तान खान, और वो आई लव हिज वॉइस टू। अब वो शायद हमारे साथ नहीं रहे जहाँ तक मैं जानता हूँ, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ये जो गीत है बहुत ही प्यारा गीत है दोस्तों। और एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये शायद एक नॉन फिल्मी गीत है, आप बताइए क्या सही या नहीं।

प्रेम है। फिर इसके बाद में आप संगीत की झनकार जो टीम है उनके साथ हो जाएंगे, फिरोज भाई के साथ, ठीक है। तो कार्यक्रम सुनते रहिए, बातें कम लेकिन चलो। जो अगला गीत है इसका कैसे बयान करूं मैं, कह रहे हैं कि मेरे दिन में बहुत सी ख्वाहिशें और अरमान हैं लेकिन मैं उन्हें लफ्जों में तुमसे कैसे बयान करूं। क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन यू डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, शायद अब डरते हैं कि कहीं इसका कोई गलत मीनिंग ना ले ले।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

कूल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फिजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फिजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

और जैसे मैंने पहले कहा था दोस्तों, अफसोस है कि आज दो प्रोग्राम आप नहीं सुन पाएंगे। रोहित सिंह और सू का जो प्रोग्राम है, हम कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए कुछ हमारा यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है इसीलिए। खैर चलो, अगर मैं आपसे पूछूं, लेकिन इसके बाद आपको बता दूं, ये कार्यक्रम जो संगीत के झनकार आप सुनेंगे, और होपफुली 5 बजे से सब कुछ ठीक हो जाएगा और शशि झोकन के साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम। आई एम ऑलमोस्ट 90% सर्टेन इट विल बी डन। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, ओ अनजान मुसाफिर, अगर कहीं हो कभी मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के इंतज़ार में हूँ। पता बताइए कौन सा गीत है? लेकिन चलो, समय बहुत कम है। ए अजनबी, तू भी कभी आवाज़ दे कहीं से।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म दिल से इस गीत को आपने सुना उदित नारायण और महालक्ष्मी इन दोनों की आवाजों में। बहुत ही प्यारा गीत अभी आपने सुना दोस्तों। समय बहुत कम है, बस 10 मिनट बचा है और इसके बाद में फिरोज भाई के साथ आप हो जाएंगे और कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। और अगला जो है एक गजल है, मेरे ख्याल से भूपेंद्र सिंह ने गाया है और ये एल्बम शबनम से लिया गया है दोस्तों। और भूपेंद्र सिंह की जो म्यूजिक जी, उन्होंने ही म्यूजिक दिया है और गीत का बोल है आहट से, जी हाँ, आहट से कोई आ जाए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो।

थैंक यू, आप लोग ने फिल्म शो बहुत एंजॉय किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब यहाँ से जाने का वक्त हुआ है और आपको बता दूं कि इसके बाद फिरोज भाई आपके साथ हो जाएंगे, तो आप जरूर सुनिएगा। चलिए अगला जो आखिरी नगमा है, एक जंगल की कहानी, फिल्म का नाम भी है जंगल में मंगल, एक जंगल की कहानी जहाँ प्यार और शरारत दोनों साथ चलते हैं, ठीक है। और एक गीत कहता है तुम कितनी खूबसूरत हो, और आप लोग सब बहुत खूबसूरत हो दोस्तों। हैव अ लवली वीकेंड, एंजॉय द वीकेंड, प्लीज कीप सेफ, कल सुबह मैं मिलूंगा।

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनका।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
1: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान। यह है संगीत की झनकार, मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान। साथ देने के लिए और इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वादे के मुताबिक हर सप्ते की तरह रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपका दिलचाहा कार्यक्रम संगीत की झनकार स्टेशन 71 ब्रिस्बेन पर। आप जैसे जानते हैं संगीत के झनकार में हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत 50s, 60s और 70s से निकाले हुए ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है। जी हाँ, आपको सफर कराते हैं यादों के साथ, यानी कि डाउन मेमोरी लेन, यादों का सफर। और थोड़ी देर तक हम खामोशी से इस बैकग्राउंड म्यूजिक को स

0: जी हाँ, आपको याद होगा द डांसिंग सीक्वेंस ऑफ शम्मी कपूर एंड आशा भोसले इन दैट फिल्म दिल तक देखो, म्यूजिक बाय उषा खन्ना। जी हाँ, टू सेट द मूड फॉर आवर यादों का सफर, हम आपके लिए पेश करेंगे चुने हुए कुछ संगीत, कुछ नहीं सिर्फ दो संगीत चुने हुए फिल्म दिल दिख देखो से निकाली हुई। तो चलें, हम और तुम और ये समा और ये है यादों का सफर।
1: हम और तुम और ये समा, क्या